गवाए निर्मल गुण गावे नित साचे के निर्मल नाद बजावणिया निर्मल अमृत गुरते पाया विच हो आप मुआ तिथे मोह ना माया निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल।

ना मन वसाए माया कारण पेड़ बंद नाचै दूजे भाए दुख पावनिया जिस अंतर प्रीत लगै सो मुक्ता इंद्री वस सच संजम जुगता गुर कै शब्द सदा हर ध्याए एहा भगत हर भावनिया गुरमुख भगत जुग चारे होई होरत भगत ना पाए कोई नानक नाम गुर भगती पाईऐ गुर चरणी चित लावणिया माज महला तीजा सच्चा सेवी सच साला।

सुख सहज समाद लगावणिया जो हर सेव है से सदा सोह है सुबा सुरत सुहावणिया रहाओ सब को तेरा भगत कहाए से भगत तेरा मन पाए सच बाणी तुद सालाहन रंग राते।

सहज ना पाए गुरमुख सहज समावणिया रहाओ। तू आपे सोह है आपे जग मोह है, तू आपे नदरी जगत परोव है, तू आपे दुख सुख देव है करते गुरमुख हर दे खावणिया। आपे करता करे कराए आपे शब्द गुर मन वसाए सब दे उपज।

गुरमत हर रस पावनया इस गुफा मह एक थान सुहाया पूरा गुर होमे भरम चुकाया आन दिन नाम सलाहन रंग राते।

पेई अड़ै पिर चेतै नाही, दूजै मुठी रोवै ताही, खरी कुवाल्यो कुरूप कुलखणी, सुपनै पिर नहीं पावणिया, पेई अड़ै पिर मन वसाया।

दुख पावणया जिन शिष्ट साजी सोई जाना आपे मेला शब्द पछाणा नानक नाम मिलया तिन जन कौ जिन तुर मस्तक लेख लिखावणया माज महला चौथा आद पुरख अपरंपर आपे आपे थापे थाप ओ थापे सब मह वर्ता एको सोई गुरमुख सोभा पावणया हौ वारी जियो वारी निरंकारी नाम ते आवणया तिस रूप न रेखिया कट कट देखिया गुरमुख अलख लखावणया रहाओ तू दयाल किरपाल प्रभ सोई तुद बिन दूजा अवर न कोई गुर प्रसाद करे नाम देवै नामे नाम समावणया तू आपे सच्चा सिरजनहारा भगती भरे तेरे भंडारा गुरमुख नाम मिले मन भीजै सहज।

0: सच्चा धारे वडभागी दर्शन पावणिया रहाओ साधक सिद्ध जसै कौ फिरदे ब्रह्मे इंद्र त्यायन हिरदे।
1: हां जी तद्दे नूं शुद्ध बोलना दद्दा बोलेगा थोड़ा जिहा वैसे तुहाडा अभ्यास का भी फर्क है। ये जिहड़े अखर पंज अखर आउंदे ने मैं सारिआं दे ध्यान विच लिया दिया कग्गा झज्जा टड्डा तद्दा ते पब्बा ये दोहरी आवाज रखते ने दस्या होया वैसे तो पहला पर रिमाइंड कराउण वाली गल है ते जदों ये पहली पोजिशन च हुंदे ने शब्द नूं शुरू करदे ने फिर इन्हां दी आवाज शुद्ध रहिंदी है ते जदों पहली पोजिशन छड के दूजी तीजी चौथी कितने भी जाते हैं फिर इन्हों की आवाज थोड़ी भारी हो जाती है। वो डिटेल में दसना हो धद्दे थोड़ा जहा दद्दा मिक्स हो जाता है पब्बे दे थोड़ा जहा बब्बा मिक्स हों पूरा बब्बा नहीं बनता हों जिस तरह आप गोभी कहने उ बब्बा नहीं बोलते गोभी नहीं कहते गोभी इस तरह दवाजा ने पंजे अखर तुम नोट रखने ने साधक सिद्ध जिसै को फिर दे। चलो जी
0: साधक सिद्ध जिसै को फिर दे ब्रह्मे इंद्र ध्यायन हिरदे कोट ते तीसा खोज है ताकाओ गोरमिल।

भरे भंडारा दया धार राखे तुद सेई पूरै करम समावणिया अंध कूप ते कंडै चाड़े कर कृपा दास नदर निहाले गुण गावह पूर्ण अबनासी कह कह सुन।

साध संग जिन बहने हर धन जनी संजया से गंभीर अपार जियो हर अम्यो रसायन पीवियै मुहे डिठै जानकै जीवियै कार्ज सब सुवार लै नित पूजह गुर के पाप जियो जो हर कीता अपना तिन्ह गुसाई जापना सो सूरा प्रधान सो मस्तक जिसद भाग जियो मन मंदे प्रभ अवगाहिया एह रस भूगण पातशाहिया मंदा मूल न उपजो तरे सच्ची कार लाग जियो करता मन वसाया।

हर हर हर जप जपे मन धीरे, हर जप जपे मन धीरे रहाओ। सिमर सिमर गुरदेव मिट गए भय दूरे, शरण आवे पार भम की ता फिर काहे झूरे। चरण सेव संत साध के सगल मनोरथ पूरे, घट घट एक वरतदा जल थल महियल पूरे। पाप बिनासन सेविया पवित्र संतन की धूरे, सब छिड़ाई खसम आप हर जप भई ठरूरे। करते किया तपाव सो दुष्ट मुए।

चेत गोविंद आराध्य होवै आनंद घना संत जना मिल पाइय रसना नाम भना जिन पाया प्रभ अपना आए तिसह गणा एक खिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना जल थल महियल।

चेत मिलाए सो प्रभु तिस कै पाए लगा वैसाख धीरन क्यों वढ़िया जिना प्रेम बिशोह हर साजन पुरख विसार कह लगी माया तोह पुत्र कलत्र ना संग धना हर अवनासी ओह पलच पलच सगली मुई झूठे तंदे मोह एकस हर के नाम बिन अगे लई है खोह दयो विसार विगुचना प्रभ बिन अवर ना कोय प्रीतम चरणी जो लगे तिन

0: कत्यक हुवे साध संग बिन सहाय सबे सोच मंगिर माहे सोहंदिया हार पिर संग बैठड़िया तिन की शोभा क्या गणी जे साहेब मेलड़िया तन मन मौलिया राम स्याओ संग साध सहेलड़िया साध जना ते बाहरी से रहन अकेलड़िया तिन दुख ना कबहू उतरै से जामकै वस पड़िया जिनी राव्या प्रभ अपना से दिसन नित से दिसन नित खड़िया रतन जवेहर लाल हर कंठ तिना जड़िया नानक बाचै धूड़ तिन प्रभ सरणी दर पड़िया
1: जिमें आया इस मगर दे महीने दे शब्द विच जिहड़ा पिछला शब्द है मंगिर माहें सोहंदियां हार पैर संग बैठड़िया कन्ने नूं लमकाउणा है ते नाल हाहा भी सारे पाठ इसे तरह ही उच्चारण करने हन पैर संग बैठड़िया मेलड़िया सहेलड़िया ते ए ख्याल रखना है कन्ना थोड़ा जा घट बोलिया गया सी तां बेनती कीती

पड़िया मंगर प्रब आराधना बहुड़ न जनमड़िया ओख तुखार ना व्यापई कंठ मिलया हर नाह

0: बेरिया हर सज्जन आगम आगाह शर्म पई नारायण बार जाओ लख बेरिया हर सज्जन अगम आगाह बार जाओ लख बेरिया
1: इनू होर स्पष्ट समझना होवे तीन पाठ बनते ने एक बिलकुल अगम बन गया एक जे टिप्पी नाल बोलीए अगम बन गया ते एक तीजा पाठ बनता है विचकार जे मान लो गगे ते अधिक लाके बोलीए अधिक पूरा तो नहीं लगना अगम पोला बोलना होगा अगम ए पाठ भी शुद्ध है अगम पाठ भी शुद्ध है अगम पाठ नहीं करना जी
0: बार जाओ लख बेरिया हर सज्जन अगम आगाह शर्म पई नारायण नानक दर पई आहु ओख सुहंदा सर्ब सुख जिस बक्से वे प्रवाह माग मज्जन संग साधुआ धूड़ी कर इसनान हर का नाम ध्याए सुन सबना नो कर दान जन्म करम मल उतरै मन ते जाए गुमान काम क्रोध न मोहियै बिनसै लोभ सुआन सच्चै मार्ग चल दिया उस्तत करे जहान अठ सठ तीर्थ सगल पुन

0: हार कीमत कोई न जाने को नाही तोलन हार मन तन अंतर वस रहे नानक नहीं सुमार दिन रैन जे प्रभ कौ सेव दे तिन कै साध बलिहार संत आराधन साध सदा सबना का बख सिंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दितियन जिंद गुर सबदी आराधिया जपिया निर्मल मंत कीमत कहन न जाइया परमेश्वर बेअंत जिस मन वसा नारायणो सो कहिया भगवंत जी की लोचा पूरी है मिला स्वामी कंत नानक जीवा जप हरी दोख सबे ही हंत दिन रैन जिस न विसरै सो हरिया होवै जंत सर्ब कला प्रभ पूरणो मन्यु ने माणी थाओ हर ओट गही मन अंदरे जप जप जीवा नाओ कर कृपा प्रभ आपनी जन तूड़ी संग समाओ ज्यो तू राखै हर ओट गही मन अंदरे जप जप जीवा नाओ कर कृपा प्रभ आपनी जन तूड़ी संग समाओ ज्यो तू राख है त्यो रहा तेरा दित्ता पैना खाओ उदम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए न सुजई किथै कूकण जाओ अज्ञान बिनासन तम हरण ऊचे अगम अमाओ मन विछुड़िया हर मेलिया नानक एहो सुआओ सर्ब कल्याणा तेतो दिन हर परसी गुर के पाओ वार माज की तथा सलोक महला पहला मलक मुरीद तथा चंद्रहड़ा सोहिया की तुनी गावनी एक ओंकार
1: एक मिनट दे दे जी अगे मंगलाचरण आ रहा है ता बेनती की है भी पूरा मंगलाचरण जो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर है वह तो आप जापजी साहब के आरंभ में भी रोज पढ़ते हैं सारे शब्द आप लै लीए भी पूरे का पूरा जिस तरह थानू पता ही है समय की घाट मैं छेती कहना चाहना उस तो बाद गुरु ग्रंथ साहब के अंदर कई रूपां दे विच जानी कि संखेप किया हुआ मंगलाचरण है जिमें कि हुण अगे आ रहा है एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद ये तो पहला एक आया सी एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद हुण ध्यान विच इस तरह आखिर विच सतगुरां ने गुर प्रसाद ही रखे है इहदे संपूर्णता की निशानी कह लो ते विचकार अखरां दा शब्दां दा कुछ वाधा घाटा कई थावां ते मिलेगा वो इसे तरह पढ़ना है जी।
2: सो दूसरी बेनती है कि जिस तरह कल भी बेनती की थी जदों श्री राग की वार आरंभ हुई सी इत्थे हुण माझ की वार प्रारंभ हो रही है 22 वारां ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सचे पातशाह जी दे अंदर जिन्हां दे विच्चों 9 धुनियां जिन्हां वारां दे उपर सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज सचे पातशाह 6वें पातशाह जी ने चढ़ाईआं ने हुण इत्थे वेखो विशेष करके लिखिया होया है मलक मुरीद तथा चंद्रढ़ा सोहिया की धुनी गावनी। सो यह धुनी है साढ़े ते भावे सिख पंथ दे विच अलोप हो गई ने कुछ गुरमुख प्यारे है ने उन्होंने पिछले समय दे विच रिकॉर्ड करके तुसी शायद इंटरनेट ते होण किते भाई हरजोत सिंह जी जख्मी बड़े गुरु घर दे महान कीर्तनीए ने उन्होंने कुछ जिहड़ियां धुनिया ने वह गाईया भी हुई ने कानड़े की वार की अगे धुन आवेगी ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਭਾਈ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੈਪੁਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਕੁਥਾਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਤਥਾ ਚੰਦਰੜਾ ਕੀ ਧੁਨੀ ਸੋਹੀਆ ਕੀ ਧੁਨੀ ਗਾਵਣੀ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਨਾਥਾ ਜਾਂ ਨਾਥਮਲ ਵੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਹ ਦੋ ਨਾਮ ਨੇ ਵੀ ਢਾਡੀ ਬੁਲਾਏ ਸੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 12 ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ 12 ਦਾ ਅਰਥ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ 12 ਨੇ ਇਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ 12 ਨੂੰ ਢਾਡੀਆਂ ਤੋਂ ਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅਲੋਪ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਾਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਯਤਨ ਹੈ

ऐसा आगू जापै महला चौथा जिस दे अंदर सच है सो सच्चा नाम मुख सच अलाए ओहो मार्ग ओहो हर मार्ग आप चलदा होरना नो हर मार्ग पाए जे अगै तीर्थ होए ता मल लहै छप्पड़ नहातै।

छुटा कुटुंब स्याओ दे हर हर नाम सब सृष्ट छाए जन नानक तिस बलिहारन जो आप जपै अवरा नाम जपाए पाउड़ी एक एक कंद मूल चुन खाहे बाण खंड वासा एक भगवा वेस कर फिर है जोगी सन्यासा अंदर तृष्णा बहुत छादन भोजन की आसा बिरथा जन्म गवाए ना गिरही ना उदासा जमकाल सिरहो ना उतरै त्रिविध मनसा गुरमति काल ना आवै नेड़ै जा होवै दासन दासा सच्चा शब्द सच मन घर ही माहे उदासा नानक सतगुर सेवन अपना से आसा ते निरासा श्लोक महला पहला जे

कथना भरिया भर भर धोवा आप न बुझा लोक बुझाई ऐसा आगू हुआ नानक अंधा होए कै दसे राह है सबस मुहाए साथ है अग्गे गया मुहे मोहे पाहे सो ऐसा आगू जापै पौड़ी महारुति सब महारुति सब तू घड़ी मूर्त विचारा तू गणत कने ना पायो सच्चे अलख अपारा पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लब लोभ अहंकारा नाओ पढ़िए नाओ बुझिए गुरमति विचारा गुरमति नाम धन खटिया भगती भरे भंडारा निर्मल नाम मनिया दर सच्चै सच्चियारा।

बहुत बहुत खुशिया खुशी कमाए, नानक भय बिन जे मरे मोहे काल उठ जाए। पौड़ी सतगुर होए दयाल ता सरदा पूरी है, सतगुर होए दयाल ना कबहू झूरी है।

0: जिसका कोई कोई कोए कोए सब को तेरा तू सबना का सोए जाके जीव जंत धन माल नानक आखन बिखम विचार गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख सत भाई कर एहो विशेख
1: कई थावां ते पाठ माता ही करना है कई थावां ते पाठ ए माता भी करना हुंदा है सो लिखिया उसे तरह ही होएगा मम्मी नू करना तेनू करना कई थावां ते माता पोला पाठ जिथे मां दी गल आएगी कई थावां ते माता जिथे मस्तिया होया जिक्र आएगा उथे माता भारा करके पाठ करना है इथे माता हुण पोला ही होना है हां जी
0: सत भाई कर एहो विशेख कहना है किछ कह ना जाए तौ कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ सरम सुरत दुए ससुर भय करनी कामन कर मन ले साहा संजोग विआहो वे जोग सच संत

नौ दरवाजे दसवा द्वार बुझ रे ज्ञानी एहो बिचार कथता बकता सुनता सोई आप बिचारे सो ज्ञानी होई रहाओ देही माटी बोलै पावन बुझ रे ज्ञानी।

तन मन शीतल साच परीख जल पुरायन रस कमल परीख शब्द रते मीठे रस ईख हुक्म संजोगी गढ़ दस द्वार पंच वस है।

तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आ गया पई अकाल की तबै चलायो सब सिखन को।

अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे है गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों झटिया तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सोरठ महला तीजा घर पहला ते तुकी एक ओंकार

केवल राम नाम मन वसया, नामे ही मुक्त पाई। रिद सिद्ध सब भगता चरणी लागी, गुर कै सहज सुभाई।

विगुच्चै जिन हर प्रभ है रखवारा, बिन सतगुर सेवे किने न पाया मन मुख।

गावो सोहिला सिवरिहो सिरजनहारो, तुम गावो मेरे निरभउ का सोहिला, हौं वारी जित सोहिले सदा सुख होए रहाओ।

ना एक तो ही सैस पद विमल नाना एक पद गंध बिन सैस तव गंध इव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिस दै चानण सब मह चानण होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत इस पावै सो आरती होए।

तिन हर पूज पूज करावा जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम विसरना ही दातार विसरना विसरना ही दातार विसर

0: नानक जाओ ए हो नानक जाओ ए हो नानक वाहे गुरु वाहेगुरु वाहे गुरु
1: गद के बुलावो गुरु गोविंद सिंह जी के मन नु पावे कार्यक्रम में आलो जावे तन तन श्री गुरु गोविंद सिंह जी मन नु

नास सुनया ईसर बर्मा इंद सुनया मुख सालाहन मंद सुनया जोग जुगत तान भेद सुनया सासत सिमृत वेद नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सत संतोख ज्ञान सुनया अठ सठ का इसनान सुनया पढ़ पढ़ पावह मान सुनया लागै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सारा गुणा के गाह सुनया सेख पीर पात साह सुनया अंधे पावह राह सुनया हाथ होवै असगा।

असंख जाप, असंख पाव, असंख पूजा, असंख तापताव, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह है उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती, असंख दातार, असंख सूर मोह भख सार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूरख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गाल

है सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़ नर खीसर जोग जोग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ पयाले गावन रतन उपाय तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गावह जोध महाबाल सूरा गावह खानी चारे गावह खंड मंडल वर भंडा।

दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नरेंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंतना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तथैनाद विनोद कोड आनंद सरम खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप ता किया गला कथिया ना जाहे जे को कह पिछै पछुताए तिथै घड़िया सुरत मत

जिन कै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै है के लू करहै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत न अंत तिथै लू लू आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार वेखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जात पाहारा धीरज सुनियार अहरन मत वेद हथियार पाओ खला अगण तप ताओ भांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़िया शब्द सच्ची टकसाल जिन कौ नदर करम तिन कार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोय दाई दाया खेलै सगल जगत।

न चक्कर बकर फिरा चतर चाक मान ही पुरतीन। लोक चौदह के बिखै जग जापई जिह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जिह थाप। परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख अपार सर्ब विश्व रच्यो स्वयं भव गणन भंजन हार। कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो परम रहत अभूत अलख अपेस। अंग राग नारंग जाकह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम। आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्ब भंजन आद रूप असूत। अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्ब लायक सर्ब कायक सर्ब को प्रतपार। सर्ब गंता सर्ब हंता सर्ब ते अनपेख सर्ब शास्त्र ना जान ही जिह रूप रंग अर रेख। परम वेद पुराण जा कह नेत भाखत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र ना आव ही बहु चित। मद भार छंद त्वै प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग। अनभव प्रकाश निस दिन अनास आजान बाहु साहान साहु राजान राज भानान भान। देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनभूत अंग अब।

मुक्ता रसावल छंद त्वैत प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे ना पोतरै ना पुत्रै ना सत्रै ना मित्रै ना तातै ना मातै ना जातै ना पातै निरसाकं सरीक हैं अमितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं भगवती छंद त्वै प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चराग है के कामल करीम है के राज करहीम है के रोजी देहांद है के राज करहिंद है करीमुल कमाल है के हुसनुल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकान है हिरासुल फिकान है कलंकं परनास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रिजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं परनास है बिहेस्तुल निवास है के सर्बुल गवान है हमेशुल रवान है हमेशुल रवान है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परं परम ईस है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के अमितो सुबास है के अजब स्वरूप है के अमितो विभूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के अमितो अपंग है मद भार छंद त्वै प्रसाद मुन मन परनाम गुण गण मुदाम अर बर अगंज हर नर परपंज अन गण परनाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण परनाम जल थल मुदाम अनछिज अंग आसन अपंग उपमा अपार गात मित उदार जाल थल अमंड दिस विस अपंड जाल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित धर तुरास आ जान बाहु एकै सदाहु ओंकार आदि कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल घर घर प्रणाम चित चरण नाम अन छिज गात आजिज न बात अन झंझ गात अन रंज बात अन तुट भंडार अन थट अपार आडीठ धर्म अत ढीठ कर्म अन ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्वै प्रसाद करुणालय है अरकालय है खल खंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के धरण है जग के करण है मन मान्या है जग जान्या है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास्या है सर्व नास्या है करुणाकर है विश्वं पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खल खंडस है पार ते पार है करुणा कर है अजपा जाप है अथपा थाप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरणी धृत है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है नर नायक है खल कायक है बिस्वं पर है करुणालय है नृप नायक है सर्व पायक है भव भंजन है अर गंजन है रिप तापन है जाप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कार है हरता हर है परमात्म है सर्व आत्म है आत्म बास है जास के जास है पुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो

साहि दसवी त्वय प्रसाद सुवैये सरावग सुध समूह सिदान के देख फिरयो घर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहयो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान के पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बिद नियावत शीस न जात बिचारे एते भय तो कहा भय भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिरै सब देश दिसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख पवान के भूपत कौन गणै नहीं जात बिचारे श्री पथ श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बिसेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेखै पौन आहार जति जत धार सबै सो विचार हजार क देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखै सुध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुर जान दलैंगे भारी गुमान भरे मन मै कर पर्वत पंख हले ना हलैंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलैंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलैंगे वीर अपार बड्डे बरियार अभिचार हिसार की धार पछैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़ नहार सो बात नहीं चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक देवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख पवान जपैंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपैंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपैंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्तर सबै अवलोक चपैंगे मानव इंद्र गजिंदर नरादप जौन तेरे लोक को राज करैंगे कोट इसनान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरैंगे ब्रह्म महेश्वर बिशन सची पत अंत फसे जम फास परैंगे जे नर श्री पत के प्रस है पग ते नर फेर न देह धरेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बक ध्यान लगायो नाथ फिरयो लिए सात समुंदरन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन लेहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरयो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लखयो हर अवाची दिशा मह काहू पछाह को सीस निवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन धायो कूर किरिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन धायो कूर किरिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पात साहि दसवी कबियो बाच बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दै मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कार दै करिय सब बैरन कौ आज संघरिय
पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम है छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बार चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिखे हमारे तारिय है, चोन चोन सत्तर हमारे मारिय है, आप हाथ दै मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय, हूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझजू करिया हो रच्छा, राख लेहो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दास कंता, काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमासा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझी अहो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पालमो बध कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाना, घट घट के पट पट की जाना, जब उदकरख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा, जब आकरख करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत देह धार सब हूं, जेते बदन सृष्ट सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम, निरंकार निरिबकार निरलंब, आदि अनिल अनाद असंब, ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा, ताका कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत न है भेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती।

रूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत भुज खान बहुर राच दीनी कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट पयो शंकर ए कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखे उबार असिखे संघरो दुष्ट जित उठवत उत्पाता सकल मलेच्छ करो रान काता जे अस तुज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार त्यै है ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहारे हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छाह छुवै सकै न कोई एक बार जिन तुमै संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग केत मैं सरण तिहारी आप हाथ दै लिहो उबारी सर्ब ठाउर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन सुबराता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छाय करता श्री अस तुझ जब भय दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावै सोई दुख ना तिसै व्यापत कोई अडिल सुनै गोंग जो याहे सो रसना पावई सुनै मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द भाओ निकटना तिन नर के रहै हो जो याकी एक बार चाओ पई को कहै चाओ पई संबत सत्रह सहस पनिजै अर्ध सहस फुन तीन कहि जै भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा तीर सतुद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया पाए गहे जाबते तुमरे तबते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो श्री असपान।

छाड कै गहयो तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार। सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया। शब्दो ता गावहो हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो। तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार। ओह करे तेरा कार्य सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनहु विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा। क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किछ है। जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वस्या वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वस्या। जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटा हो। जिस दिया एह वडियाईया। कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सभागै। घर सभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन का उसे नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे। साची लिवै बिन देह निमाणी देह निमाणी लिवै। बज हो क्या करे वेचारिया तुद बाज समरथ कोय नाही। कृपा कर बनवारिया एस नाओ होर थाओ नाही। शब्द लाग सवारिया कह नानक लिवै। बज हो क्या करे वेचारिया

जुग हो जोग निराली, ज्यो तू चलाए हे तिव चलहै स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे, जेव तू चलाए हे तिवै चलहै, जिना मार्ग पाव हे कर कृपा, जिन नाम लाए हे से हर हर सदा त्याव हे, जिसनो कथा सुनाए हे अपने से गुरद्वारै सुख पाव हे, कहै नानक सच्चे साहिब ज्यो भावै तिवै चलाव हे, एहो सोहेला सबद सुहावा, सबदो सुहावा सदा सोहेला, सत गुरु सुनाया, एहो तिन कै मन वसया, जिन तुर हो लिखिया आया, एक फिर है कनेरे कर है गल्लां, गल्ली किनै ना पाया, कह नानक सबद सोहेला सत गुरु सुनाया, पवित होए से जना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया, पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यो, पवित संगत सबाइया, कह दे पवित सुन दे पवित, से पवित जिनी मन वसाया, कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया, करमी सहज ना उपजै, विन सहजै सहसा ना जाए, नह जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए, सहसै जियो मलीन है कित संजम धोता जाए, मन धो वहो शब्द लग हो, हर स्यो रहो चित लाए, कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, एह सहसा इव जाए, जियाहो मैले बहरहु निर्मल, बहरहु निर्मल जियाहो ता मैले,

मोल ना पाया जाए, किसै विट हो रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनु सिर सौ पियै, विच हो आप जाए। जिस दा जियो तिस मिल रहै, हर वसै मन आए, हर आप

सुनहु सत बाणी। जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस समाणी, सच अलख विडाणी।

प्रगट किए। दसवा गुप्तर खाया गुरुद्वारे लाए भावनी, इकना दसवा द्वार दिखाया। तह अनेक रूप नाव नाव निद, तिसदा अंत ना जाई पाया। कह नानक हर प्यारे जियो, गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया। एहो साचा सोहेला साचा घर गावहो, गावहो ता सोहेला घर साचा। जिथै सदा सच त्यावहे, सचो त्यावह जा तुद भावह, गुरमुख जिना बुझावहे। एहो सच सबना का खसम है, जिस बक्से सो जान पावहे। कह नानक सच सोहेला सचै घर गावहे। अनद सुनहो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे।

बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

बराबर तपै पीतर वगै काती प्रणवत नानक हुकम पछाणै सुख होवै दिन राती सुकहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी

अनंत। लाटू मधानियां गा पंखी पहुने लसा सूए चार पाई जंत नानक पौंदे गणतरंत बंदर बंद पुआए सोए पे करतन चे सब कोए नच नच हसे चले सिर होए उठ ना जाई सिद्ध ना होए।

सो सेवक सेवा करे जिसनों हुक्म मनाए सी, हुक्म मनया होए प्रवान था खसमे का महल पाए सी, खसमे पावे सो करे मनुचंदिया सो फल पाए सी।

माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यो प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत ते मलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो।

पर कब्जा नहीं छड़िया, ध्यान देना। एक क्राइम है वैसे तो, किसी नूं रजिस्ट्री करा दिओ प्रॉपर्टी दी, कब्जा ना देइए, एक क्राइम बनता है। करदे आपां भी यही है, पक्खा दिता पर कब्जा कायम रख लिया, कमरा बना दिता ना लिखवा के कब्जा कायम रख लिया भी फलाने का कमरा है, उन्हें बनाया। लुधियाने जिले के एक पिंड विचों मैं लंघ रहा सी, पिंड का गुरद्वारा सी, उस गुरद्वारे के अगले पासे एक बोर्ड लगा सी, बोर्ड कोई ज्यादा कीमती नहीं सी, लोहे की चादर का बना के लाया होया सी, ये नहीं भी बड़ा खर्चा कोई उहदे ते कीता होया सी, पर उस बोर्ड के उत्ते गुरद्वारे के जिहड़े नाम दे अखर सन, बस गुरद्वारा साहब लिखिया सी, पिंडां च किहड़ा कोई विशेष नाम हुंदा गुरद्वारियां दा, जिन्ने आकार दे साइज दे गुरद्वारे दे अखर लिखे सी नाम दे ना, उन्ने ही मोटे आकार विच हेठां नाम लिखे हुए सी दो भरावां दे, ते फलाणा सिंह यू एस ए वाले, उन्होंने सेवा करवाई है इस बोर्ड की। आखो सतनाम श्री वाहे, हद हो गई है, दिता सी पर कब्जा नहीं दिता, कब्जा रख लिया। जिन्ना चिर गुरमुखो दे के कब्जा ना छटिए छड़िए, वह दिता नहीं हुंदा, वह तो केवल दिखावा है ना ही। सतोगुणी जिहड़ी बिरती है ना, वह इस ढंग की बिरती है, दिंदा ते है पर कब्जा नहीं छड़दा। मनमुख बिरती वाहे, मैं फिर याद करवा दिया, तीन गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। रजोगुणी बिरती है भी आरामदायक जीवन, राजा महाराजा वर्गा जीवन हो, बस उस ढंग की बिरती। जरूरी नहीं बंदा अमीर हो, सुभा इदा का। तमोगुणी खाना पीना नशे आदिक का भी शौक होना, गुसैला भी सुभा होना, वाशना का भी सुभा होना। ते सतोगुणी दान पुन करना, पर वड्याई चाहिए है। संसार इन्हों तिना गुणा ते चल रहा है, तीन तरह के सुभा चल रहा है। सतगुरु कहते इन्हों तिना तो बाद एक चौथा है, चौथी एक अवस्था है। तीन व्यापै जगत को, तीन व्यापदे ने संसारी बिरती वालिया, तुरिया पावै कोई, कोई कोई तुरिया पद ते पहुंचता, इन तुरिया पद कहते हैं। यह तिना गुणा तो निर्लेप अवस्था है, वाहगुरु के प्रेम की अवस्था है, सुरत की उडारी की अवस्था है, रब नाल अभेदता की अवस्था है तुरिया पद। ते भाई साहब ने गुरसिख जोगियों का जिक्र किया, मैं फिर याद करवा दिया, जोगी का अर्थ मिलिया होया, उस वाहगुरु नाल जी दी सांझ पै चुकी है। हुण कुछ उदाहरण भाई साहब ने दित्तियां ने, दृष्टांत वरते ने। पहला दृष्टांत की वरतदे ने, कहिंदे जैसे तो समेर ऊच अचल अगम अत, कहिंदे मेर पर्वत वल वेखो, हिमालय पर्वत का यह पार्ट मनिया गया, हेमकुंट साहब वाले पासे होर उपर जाके किते ये दसिया जांदा, मैं गया तो नहीं, पर मैनू जिन्ना क पता है। सुमेर पर्वत दे उत्ते सिद्ध भी बैठे सी, ये भी साडा इतिहास कहिंदा, गुरु नानक देव साहब महाराज की गोष्ठ भी हुई है सुमेर पर्वत दे उत्ते। पहाड़ां दे विच्चों जानी के हिमालय पर्वत की जिहड़ी लाइन है ना लंबी, इहदे विच्चों इस पर्वत नू बहुत महान मनिया गया। इहदी कुछ बणतर इस तरह की है, इस पर्वत दे उत्ते जिहड़ियां जड़ियां बूटियां ने वह भी कुछ खास किस्म दियां ने, सुंदर बहुत ने। जदों बरसात विच मीह पै जांदा है ते बाद विच धुप निकलदी है, रोशनी की फलैश बनती है सूरज की, वह बड़ा सोहना लगता है। इहो जे इहदे गुण ने। बर्फानी एरिया जिहड़ा वह भी बर्फ भी इहदी सुनहरी रूप विच चमकदी दसी जांदी है। हुण भाई साहब ने इस पहाड़ की गल शुरू की है, कहिंदे सुमेर पर्वत वल वेखो,

सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपार कृपा दृष्टि रहमत कीती है, जो सेवकां दे सबे काज सुहिरड़े थीए, गुरु नानक सतगुरु तुठा वाली मेहरमत बख्शिश कीती है। काका मेरे वीर जरनैल सिंह जी और बेटी बीबी मनमीत कौर, उन्हां दे आनंद कारज दी दोनों परिवारां नूं बहुत बहुत दास जत्थे वालों वधाई होवे। सतगुरु सच्चे पातशाह धन गुरु रामदास महाराज इन्हां दा ग्रस्त मार्ग सुहेला करन, सतगुरु सच्चे पातशाह सिद्धि वी काल चढ़दी कला बख्शिश करन, भुल्लां चुकां दी खिमा आनंद कारज दी सारी संगत नूं बहुत बहुत वधाई। सलो पानी पिता माता धरत महत दिवस रात।

सगल समग्री तुम रे सूतर तारी तुम ते होए तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आहे। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरियै घर नौ निद आवै ताए सब थाई होए सहाय। दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए सहाय। दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिया दे पाठ दर्शन दीदार जी का त्यांतर के बोलो जी। पंज प्यारे चार साहिबजादे चाली मुक्ते समूह संगतां हठियां जपियां तपियां जिन्ना आप जी दा नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अणडिट कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी पावन कमाई दा त्यांतर के बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चराए गए बच्चियां दे टोटे टोटे करके गलां विच हार पवाए सवा सवा मन दे गिले पीसने पीसे खन्नी खन्नी रोटी ते गुजारा कीता जंडा नाल बन के साड़े गए देगां विच उबाले गए पुठियां खल्लां लुहाइयां गुरुद्वारियां दी सेवा संभाल दे लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुआसा संग निवाही तिना समूह शहीदां दी पावन पवित्र कमाई दा त्यांतर के बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दी पावन कमाई दा त्यांतर के बोलो जी। प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चित आवण का सदका सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियायत देग तेग फतेहे बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। बख्शो जी।

जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वेसा हो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, तनासरी महला पंजवा।

तारू सिंह ने पुछया कि हाल बाबा का तो अखियां चो बगे तेरे नीर मियां लगदा सब कुछ खुस गया है बजे काजे तलेजे कलेजे बिच तीर मिया भाई तारू सिंह लगदा तेरे कलेजे तीर लागे लगदा बड़ा कुछ गवाच गया तेरे होंकियों तो पता लगदा तेरिया दर्द कहानियां लंबिया ने सो आओ रेंदे हुए इतिहास दियां सवावां कल आले दवान विच करन दा जतन करांगे एक नहीं अनेक तरह दियां भुलां हो जांदियां गुरु साहब जी बख्शन आ रहे आ गुनाहां दी माफी बख्शन अगे तो समत देन शुद्ध गुरबाणी पढ़न दी गुरु घर सवावां करन दी सेवा सिमरन करन दियां दातां पातशाह साडियां तुहाडियां हाजरियां प्रवान करन बहुत ही सत्कारयोग गुरु घर दे कीर्तनीए पंथक प्रसिद कीर्तनी जथा भाई साहब भाई सुखविंदर सिंह जी जामणी साहब वाले बड़ा रस भिन्ना गुरबाणी का कीर्तन करते गुरु साहब जी बड़ी बख्शिश है महाराज सच्चे पातशाह जी अमृत बाणी के कीर्तन सरवण कराउणगे जी कलयुग मैं कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया है लाए ध्यान आओ सरवण करिए आनंद माणिए पुलचुक की खिमा फतेह की सांझ प्राप्त करिए आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

कहो नानक सुन री मना परे न जम कै ताम। जो प्राणी ममता तजै लोभ मोह अहंकार। कहो नानक आपन तरै और न लेत उधार। ज्यो सुपना अर भिखना ऐसे जग को जान। इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। निस दिन माया कारण प्राणी डोलत नीत। कोटन में नानक को नारायण जह चीत। जैसे जल ते बुद्ध बदा उपजै बिन सह नीत। जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। प्राणी कछु न चेत ई मद माया के अंध। कहो नानक बिन हर भजन परत ताहि जम फंद। जो

सब किश होत उपाय। नानक सब किश तुमरै हाथ में, तुम ही होत सहाय। संग सखा सब

जेहि सिंह मरत संकट मिटै दर्श तुहारो होय। राम नाम उर मैं गहयो जा कै सम नहीं कोय। जेहि सिंह मरत संकट मिटै दर्श तुहारो होय। मुदावनी महला पंजवा। थाल विच तिन वस्तु पयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो। जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। इह वस्त जी ने जाई नित नित रख उर धारो। तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलापे आठो हो नंदन प्रथम राग भैरो वै करही पंच रागनी संग उचरही प्रथम भैरवी बेलावली पुन्या की गाव है बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए भैरो की पंचो नारी पंचम हरख दसाख सुनावे बंगाल मद माधव गावे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी भांत अष्टपुत्र भैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया माल कौशक अलापहे संग रागनी पांचो थापहे गौंड करी अर देव गंधारी गंधारी सी होती उचारी तनासरी ए पाचो गाई माल रा कौशक संग लाई मारू मस्तांग में वारा परबल चंड कौशक ओ पारा खोखट ओ पौरा नंद गाये अष्ट माल कौशक संग लाए पुनायो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सोत उठे तान कलोल गायन तार मिलावही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सस इरी लह पार जा संग लाई पांचो आर जा सुरमा नंद भास्कर आई चंद्र बेमंगलन सुहाय सरस बान ओ आहे बिनोदा गाव है सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी काशे टेली काशे लीपट मंजरी टोडी कही आलाप कामो दी ओ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल ओ रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा ओ कन राख लियाना अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग वै गावे पांचो संग बरंगन लावे बैरारी करनाटी धरी गवरी गावे आसावरी ते पाछे सिंधवी आलापी श्री राग स्यों पांचो थापी सालू सारग सागरा और गौंड गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग के

सागन गुणी ऊचे सोर सूहो पनकीनी मेघ राग स्यों पांचो चीनी बैरा धर गज धर के दारा जबली धर नट औ जल धारा।

सो गोपाल पंडित सदिहो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण हर रंग गुर पावे पिंड।

काल गौर से बिया अहन इस सहज सुभाए दर्शन परसें गुरु का जन्म मरण दुख जाए हुआ सिबत खसाम दी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठा सचे पादशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सचा पादशाहो सिर श्याम दैसा जिस पास बैठिया सो ही है सबना दावे जिस पास बैठिया सो ही है सबना दावे

तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुदे आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मैडा साई, जो तो भावै सोई थीसी।

पच्छा श्री अस तो जुजू करी ओह रच्छा राख लेहो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्ट।

कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पैव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत पेन पेन तुहे तेती। तुमरा लखा ना जाए पसारा, केह बेद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, अरंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, पुत पुज खान बौहर राच दीनी। कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए।